0: 방송조사방송안이밀리시나이자
1: 이이
0: 이폴레시나안아디마하그뭐누구마야원양만시나이자안돼누구마야
1: 응
0: 응강농용허开방뜨냐
1: 응
0: 응이거아마노콜롬비앙허러
1: 응
0: 응손나라신내앙허러안뜨마마안뜨게부족해정다
1: 응응
0: 응가니비샤스부이도아버노앙버롱은쇼롱마버안뜨냐안부이도카요
1: 응응
0: 뭐안하면이부족하던가야또뭐안해내꺼는버롱나사만부족하자뭐무뜨이앙무뜨이능무뜨이거앙무뜨이시불라하이시불라히사오고에랑판사돈안하고부이판사돈또판안가부족하정따
1: 아우아우더커이인게부쿡
0: 네한바이
1: 인가한바이인가한바이인가한
0: 바이인가
1: दागदे बक्सन फारिके चंगचिनो पले बखानि शालकमा पांदानो एफएम जेंतनो मथागे चंग हाइनि खरंग पांदा खनामा फाइसिंग थांगले

0: तेजुलनाय रकनि नाहार मुं कोप्लाय फाननि बदलो जबा खालायनानै तै थैप्लाय रकनि सामनो बरम रोमानि आबन कारिब सबाव थैजानाय रकनि ककन मैतु नारकमानि यक मुंनि सबाव किरिमुं ओंखा नाकारजाग्या फेमलंमुं खाबायमुं तै नाकारजाग्या सुमसकसे अबंखा सरोजिनी नायजुनी ककाहाम
1: परि जों जरा खानालायनाय दिनैनि सारलाय बुमाव तामतम मुंलांखा दिनै कायसा नांकुकमानि साल तंग आबंखा हायुं मेट्रलजि साल मेट्रलजि ओंखा जे जों अमहायके सुमानि रमदि अब तामतम न सु ताबु हायुं गनांगि न ताबु कायसा किलो एबा किलोग्राम केजि आबनो सुवि देखांके आबो हायुं गनांगिनो आबो जत थायनो एबा जत हास्तेवनो आबो ओ मेजरमेन्ट एबा सुमानिनो गसिवि नाजागु हिंके अबो रमदि अमहायके जों कुलुम काफ्रुव थार्मोमिटार ते ते अमहाय जुदा जुदा मेसिन रगो रमदि साइन्स नि लेबरेटरिस रगो साखाम नक रगो फैक्ट्री रगो इंजीनियरिंग ते बानिया ख्लाइथनि ओ सुमानि न सामगो थेबा जागो ग्याम बगिन अमो बिसि चि चार स्निचि बा बिसि वन अब कायसा मीटर कन्वेन्शन हिनिनाय सयरमानि बिसिं दिखाय ओ साल न नारग जाखा आबनो कारि तंग तिनि हायुं चा नि साल इंटरनेशनल टी डे चा जों जे चा नंगलाय माने आ चा जों अबो कायसा चा बेलायखेनो नांगक माने हायुं गनांगेनो कायसाबो रां थं सनाम थानि व ते जानि जानि हुकुमु वब बसु जरति नांग माने आबनो फुनुक जागो एंकाय ते कायसे तंग बंखा हायुं गनांगै ओ साल न नारग जागे फिया बाबो युनाइटेड स्टेट्स फिया बाबो कायसा नांकुक माने हिनिने आं दिनै सानानि नायो अबो कायसा बरक नेशनल बाइक टु वर्क डे एबा सामुं ख्लायथानिओ बानिया ओ थांथानिओ जानजानिओ एबा अमहाय तांनक रगो थांथानिओ साइकेल बाइ साइकेल याखबा पेडल साइकेल आबो बसुक जराति चिनि साक हामनि बागि नांकुक आबनो कुचुगति साव ते जों पेडल साइकेल एबा साइकेल बाय थांलाय सुख्लाय माने आबो साखनि बागि सिमि काहामिया जोंनि तंखरनबो काहाम ख्लायो तानेंगे जों आरो थग दावैनाय दैनानि नांगिया थांलाय सुनानि नांगिया फारि आबनो कारि तंग 2011 बिसिब खरगसा बारत हास्तेनि बोरै रगनि बिसिंग बंखा प्रेमलता अगरवाल झारखंडनि बोरै भारत हास्तेनि एबा भारत हाकतनि बोरै रंनि बिसिंग उमर गनांकुक याखाबा बिनि उमर ब्रैजि चार उमरन अब माउन्ट एभारेस्टनि जतनि हाथाय गचुक ग कावै फुनका ते कावै बमानका नि नाय साजाखा अम्नकारि तंग बिसि 1498 बिसिब खरगसा पर्तुगिस वास्को दा गामा बो बेलायकेन चिनि लाइ बुमाव चों बनतै बुमा परीक्षा बो भारत हास्ते बाइके सक बाइके हांकाय ताबुकनि कचि कोडे याखबा आगिनि बुमुंगाय कलकत बो तैमा कतर र नखरपुर आरो जेफ्रु बो लामा तिखलायमान का भारत हास्ते व तै निबिसिं तिखाय भारत हास्ते सक बायनानि बो लामामान खाफ्रुनो ब कचिकोडेव सपाके हानि साजाखा फायदे आमसुनो खानालायानो ते ताबुसुङ जरा खानालायनाय सा खामग्राय निकक जोंदिनिनि सा खामग्राय हान्टा भाइरस नति खानालायनाय अब इं खेपेनि ककतमान जों अ तालनि ककतमान जों सायमानो हान्टा भाइरस ताबुक अब ओंखा कायसा सिन्ज रगनि बिसिंति मानमानि अब पुइला सायमान खा अमे ताल

पुइथाव गोबां बिथिनि मानि मानथगु साजाखनाय सारा पार्सन पुइथाव दै मानथगु सुकुसिबा पार्सन सरकरा मानथगु थाम फुटासनि ग्राम आमिस मानथगु फुटासनि ग्राम केलसियम मानथगु ब्रैजि मिलिग्राम लौहा मानथगु फुटा स्नि ग्राम भिटामिन सी मानथगु चार ग्राम आकर पैठा खायनानि बागै नकबार तिबार मानि नांगौ किसा सिबुबु एबाखे तुं रेरेव मासिं ताल थामनो कारै तेजत तजरावनो पैठा कायमानु हा आंनानि नांगौ हासिंसा हाबाय हा सुबुक सुबुक सापुल जाग पैठा तालबा जराति टंगो सय सय जरा अंखा फेब्रुवारि तालनि सिमि जुन ताल जरा पैठा कायनानि बागै बोस्लै नांगौ हेक्टर कायसाव सेरबा बोस्लै कायनानि सेकांगौ खेतन आल वाइब्रि वाइब्रिया सुसुवायै आफ्रुवन सारक रोनानि नांगौ मस्कि नांगौ हेक्टर कायसाव नैजि टन डिएसपि नांगौ सेर सारा स्निजिबा इउरिया नांगौ सेर सारा स्निजिबा एसपि नांगौ सेर सारा बाजि जिपसाम नांगौ सारा ग्राम दसता नांगौ सेर नैजि जाब्रा ब्रबारक साफसुथ्रा खालायै रोनानि नांनाय वातैग्रै फुरुव दैनि सेबसाब मातनि नाय बुफां बोसा सेन्टिमिटार नैजिबा सुख मानि उलन सा फुटा बा मिटार कसुखे मासा तांगै रोनानि नांनाय मासा अहाखे पैथा गोबां बथाय थायो फांसारा साल स्निसि नि उल बथाय थायनायनि सेंगौ साल जिथाम नि उलन बथाय खाखनानि सेंगौ वाइसा बथाय थायखे तालनै तालथाम सयावैनो बथाय मानि दंनाय दाबुंनि सय सिमाबाय तुमुं पैथा खालाय दंखाखे हेक्टर कायसाव ओंया होनमानिन नैजिबा टन पैथा मानि मानो आसुजारा पैथा कायमानतै थाइजाथानि कक सिलायखा फायदि दाबोसों कक थुमो थांलायानो

0: आखा आबंखा तीन हाई सालमारीओन फोंनि दामजिसा तामानी जराव तारीखनी दाम बजारत आबो रोजागैन दंनाय आबनो कारीब माध्यमिक टाइ हायर सेकेंडरी जे आमजुक मुंग हाइन हाइते से रिव्यू खाइनानि बागै कमिमलाइब रेनानि बागै साजाखा कमिमलाइ रेनानि पाइथाक सालमारी ओंखा ओबिसिनि मेटालनि साल नैजिस्नि सालमारी जरा तेव कहमके सिनानि बागै वेबसाइट नायमान्नाय www.tbsc.tripura.gov.in वेबसाइट
1: तिके शंखा मेघालय ते एबा शिलंग हस्ते वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलंग एबा बीएड एडमिशन निबागै नोटिफिकेशन एबा साखलाई जाखा अर पाइथाक ऑनलाइन ते कयब्लाय रेनानि सालमारिं खा जून तालनि बा सालमारि जराव ते अर बरक नि वेबसाइट ते रेनानि हिंकाय बरकनि वेबसाइट हिंखा www.ece.nCERT.gov.in तेर कैसा कमन एंट्रेंस एग्जाम एवं आम जग मुंग आजगमानी बिशिंती नहारी मानाय और बिशिक नैनी बागी बीएड कोर्स निबागी साकलाई जाखा ते स्कॉलरशिप जे माननी नांगनाय रग बरग माननाय ते बरै ते चला रकनी बागी बो तंगनानी हॉस्टेल रिजाक तंगो गर जुदा जुदा तेब साकलाइखा और एसी क्लासरूम लेबोरेटरीज ते कॉन्फ्रेंस हॉल गाय ते गुबुनी नांगमानी रग गबांग मानो बेबाक काहाम फेसिलिटी हिनिनि साजाखा गे बरकनि ते कैसा वेबसाइट तेबो बरकनि अ अनलाइन ति सिनानि हिंकाय बरकनि वेबसाइट थांगे नाय मानो https://nerie.nic.in/
0: अनिया फा तंगते कैसा मखे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आरो एडमिशन नहार जागै तंग कोर्स संखा बेसिक ब्रेनि बागै बीबीए ऑनर्स एनईपी आबंका डिग्री कोर्स ता कैसा अंक है पेंटिंग स्कल्पचर ते आर्ट हिस्ट्री ओ सर मंगनी बागै रोंमारि नायनि नांगौ क्लास 12 पास उमर उनानि नांनाय बिसि निसि सारनि बिसिंग ता कैसा अंक है आबोखे बिसि सानि बागै Certificate Course in Decorative Art, CCDA. Apni bagai rengmari ngani nangnai madhyamik pass. Komyumulai rengani bagai paithak salmari ngkha obisini jun talne sal sinai salmari jora. तब कहम के सिनानी मकई वेबसाइट नै माननाय www.gcacetripura.gov.in वेबसाइट
1: देशे तंगो महांखा सीटेट एबा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अबो सीबीएसई नि फाजिंग दिखै अर ऑनलाइन ति रनानी मे तालनी अ ची सा सालमारिनि सिमि जून तालनी ची सालमारि जरा अर ते जे कयब्लाय रनानि रां मारिंखा जेनरल ते ओबीसी रगनि बागै कायसा तुमुं कायसा पेपर रन आमजोंमुं रनानि हिंक अर साय साय रां मारनाय ते तुमुं कायनि पेपर रन आमजोंमुं रनानि हिंके चिनै साय मारनाय ते एसटीएससी याखबा महाके ते गुबुनि रगनि बागै हिंकाय कायसा पेपर नि बागै हिंके बारा रां मारनाय ते कायनि पेपरनि बागै हिंके दक्रा रां मारनाय ते पाइथाक सालमारि साखा जून तालनि चि सालमारि जरा आमजग मुं उंनाय सेप्टेम्बर तालनि दक सालमारि व
0: आव फारिताबसं सेबगो बरतलामानि खनालायसिवान करबुक आर दि ब्लक ताय टेपानिया आर दि ब्लगो

0: बारे में क्या परफॉर्मेंस का बोलो
1: द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में
4: पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला

0: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
2: অভিজ্ঞপন থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি সাথী এবং আমার সঙ্গে ছিল
3: আমি কোয়েল।
2: সবাই খুব ভালো থাকবেন, নমস্কার। আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজি সংবাদ এবং এরপরে শিলং কেন্দ্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ইংরেজি সংবাদ।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो मीट द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में
4: पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
9: नमस्कार 101.6 मेगाहर्ट्ज़

जों रोजाबं खोनालाय दङ खानि रोजाबं बान्दाव आबब नरकनि खोनादबजाक मानि रोजाबं न' फुंगाय फैदि एस एम एस नायलायनाय साबदा मसि हरका फुंखाहा मां दागार जलानि कनिका रोजाबंनि ककथाय ओंखा बुसुक नन' जास्रमाय खाफां रोजाबनाय ओंखा तमाल ते सुरबि हामबाय आफर नन' गेन नब बेलाय खेनो हामबाय हिंगाय अजराव रोजाबं खोनानाय हिनिखा हरका बुखु बख्रा बुखु कनिका बुसुक नन' जास्रमाय खाफां हिंगा फायदि अजराव खोनालायनाय बिनि खोनादबजाक मानि रोजाबं सारा जाबाय डक मेगा हार साय फेमु जेन्तो हिंगे खोनादि निनि खोनादबजाक मानि रोजाबं तेजो तुमारि किजिं सं नरक खोनादि खाख्लाय बुखुक न कारिब ते खरकसाय खरकसा निलिब अरोजाबं खोनादबजाक मानिब खबजागै फानो मानब्लेना हिंगे खोनादि अरोजाबं

रखने दंग सारा पॉइंट अफ मेगा हार सैफे मुजेंदर स्टूडियो आसूक जगह बीनता खाला दंगाई अचिन खानी रचापंग पान रखने कई हरजा खाना तकजाकमानी रचापंग रखनकई अजराव ताकुक रवींद्र रचापंग खाना नाहनी कई हरमानी पायल त्रिपुरानी खनांग पियाबा सारा मुचुंग ताकुक रवींद्र न पायल त्रिपुरानी रचापंग चिन्हरक गई हाबनी बागे नन खानी मानगला गई हजराव हाई नई तेखरक्सानी एस एम एस आंग नाइन फुंकाहाम आंग जम्पुई जलानी विश्वराय आंग रचाप मुंखना नाय ओनी खाचुक आंग नो नो नीलिमानी खरांगबाय रचाप जाक रचाप मुंगे अजराव जों खोना लायनाय ताखुक विश्वराय खोनानाय हिनि कयहरमानि अखरा ततक रचाप मुंग नंगे ताखुक विश्वराय खोनादि हिनि खोनातक जाक मानि रचाप मुंग ते जतमारे किजिं संनो रब

0: खोनादो दो खरोजा बुंजों खोनालाय दङ हंगे फालिथाखौ गजराव जों खोनालायनाय आकाशवाणीनि बिसि चुकु जि बुंमानो रोगै कक थाइसा थाइनै
1: खोनाथाङो अल इन्डिया रेडिय' आकाशवाणी आगरतला कक बरकनि पान्डा आं राकेश आव फाइदिगे हायनावहाय जों दिनैबो अल इन्डिया रेडिय' भारत हाक्तर सेंजाकमानि बिसि सुखुसि एबा 90 इयार्स बुंमानरगै थुमै तुजा कक थाइजा थाइनै खोनालायफिनाय आव जों दिनै टेखरक्सा सैगोरोंनो मानखा बरम गोनां सुबल चन्द्र देव बर्मा सारन' लामसगो सारन' खुलुमखा
2: बेलानि हामबाय
1: आव बेलानि हामबाय सारन' आं पैलानो सोंना मुसंग' आवाय कक एबा रेडिय' भारत हाक्तर जेंजाकमानि 90 इयार्स एबा बिसि सुखुसि कावैथांगा आवायखक सिनि हुकुमु मुकुमु सचा थानि एबा मोथाङै नारक थानि निनि मकलो बमहायके नुक अबखिजा सायखनारिदि सार
2: आव बेलायनो हामबाय आव बेलाय नांकुमा सोंमुं निनि अब रेडिय' एबा आवायखक सिनि हुकुमु मुकुमुनो ससाय नारक थानि बिनि भुमिका एबा बुथाय बेलाय कतर जों आगि फुरु रेडिय' खोनानि बागै रायजराव खुब आकाम सिखामुंगु गामियाव कासा रेडिय' दङबा जों जत्न' कुथुमै खोनालायो आगिय' रेडिय' खोनाफोरखौ जों पालखे थांलायै कासा नुखुंग' रेडिय' दङबा गाना आसुलाय दङलायो बुफुरु कक्रक पान्डा आवै ओंनाय दिबर जरानि ओंथों हयथ' नखा पिलाला साल हरनि जरा ओंथों आफुरु रग' जों आगिनि कोसाम कोसाम रोसामनाय रग ताक बरग थैबायलाहा गुरुमोहन देबरमा नि रोसामुं बनि कक बुथाय ओंखा पान्थर मोजाङै बुङो यंला खरां गे हिरन देबरमा बबु थैजालाहा टंना रोङिया टंकमा जाना रोङिया चाकमा हुनै आ कक बुटां रक ताइ चिरकुमार देबरमा बनबो हानो अ कुचिकनते तमा सों नाथकते ताइले मालिया खानो मेथेबि नोंबा जजलैते मारक अबरक खानाथक रोजामु रोजामु बिसिङ ताबुबो उराम उराम न एफ एम प्रग्राम हुन्दि आकाशवाणी आगरतला प्रग्राम हुन्दि अमरक खाना लायो जों गे कमलापति थुमनुक बहानो जों आगियो खोनाव अब गोबां बिसि रमुयो चलियो दङ थुमनुक ताबुबो रेडिय'ब उराम उराम आवाय खालायजागै दङ ताबुकथ' रेडिय' रक गोरैखानो होनै मानो गोरैफानो अबनि बदला मबाइल दै सों खोनाय मानो एप्स खुलुखाखेन' हायाखाबा दमा होनाय टाइबो न इउटुब रक खुलुखेन' आबटिबो नाय खोनाय मानो जों मबाइल दैयै रेडिय' बिसिंतै गोबाङा प्रग्राम खोनाय मान बोले ते खोनाबो दङ ताबुक रमदि कक नुनि जापा हायाखाबा ताबुक ताम होनाय बन कथमाबो सारक हायाखाबा ताइ जायनक प्रग्राम रक अमतिर पदरे पद जों अ रेडिय' बिसिं थै खोनाबैनो जों तैसा डेभलप उंगु मोटामुटि जों सालसा रेडिय' खोनाना थांफुरु बुबागोरा बेटेरि पाइजोगै जों रेडिय' मा खोनाबुलिया बेलानिया जों आफ्रु दुखु नांसुखा आफ्रु गामियाव खुंसा रेडिय'बा जों ताइ खोनाय मालिया हामबाय
1: आव सारन' बेलायनो हामाय निनि मरकक जोंनो सावै खोनारिमोननि बागै बायथाग' बाथं साखे नों खोनाय दंनाय लोगोरावनो तामक गोसारनो मुसुं सार
2: आं लुकुरकनो गोसारना मुसुंग' जतन' आगिनि हाखेन' रेडिय' खोनाय दंबायदि रेडिय'नि बिसिंतै जों गोबां मा नांमानि पान्डारक आवाय खालाय जागै दंमानि न' खोनाय मानो डाक्टारनि पान्डा हौवानि पान्डा कग्रुमानि पान्डा सिख्ला सिख्रिनि पान्डा सरायरकनि पान्डा टेकक तुमारक जों आवाय खकनि बिसिंतै बेबाखौनो खोनाबै मानो अबनि बागै जतन' लुकुरकन' कयना मुसुंग' रेडिय' खोनानि बागै आसोखनो हामबाय खुलुमगा
1: आव हामबाय खोनाय दंनाय जत' टाखकटै बुहुक सोंन' बेलायनो हामबाय दिनासोनो ओंसितुन फायनाय सालाव जों तैबो अबहाय सैगोरों रोसाब गोरों वानसुक गोरों रंनि वानसुं मंदंन' थुमैतु होननानै सायदंनाय सारन' बेलायनो हामबाय खुलुमगा
2: खुलुमगा

बेबाकक शिलचामुंग खनाना जिंजालिया काग्रनाव सिंगल विंडो सिस्टम चयल खलाइजा कहने शाखा जनजाति हामक्राय मंत्री विकास देवबर्मा त्रिपुरा रंगकचार नाय मथाबाय नायकलजाक माध्यमिक कुचुक माध्यमिक तै माद्रासा आमचुकमुंनि ओंखारिनि कांग्लाय तै सार्टिफिकेट दिनि रोजागान हास्ते हपां हास्ते गनांगै बेबागै खुंसारा अंगनावारि केन्द्रव इंग्लिस मेडियाम सोलायना सामुं चेंखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नायकलजाक हास्ते बेरेमनि उमर जिथाम बिसिनि क्रिकेट बादायमाव मिया कायदक थोंमुं ओंखा दिनि नखा किसा मोनाकजाक दंगानो हास्तेनि किसासो खांकर फेरांगगै वातै वाइफानो मानो दिनि सालनि साखानि तुंमारि 35 डिग्री सेलसियासनि गानागिनिव तंगै मानो आशुक जराथै खोनाबायखा ताबो सुजरा मानमानि कबर कक्तम बुबाग्राखे फायदे अजराव एस एम एस 99 साबतम सिहरका सिहरनायखा बेलबारिनि सन्जय कबर गसपेल सं जेकुनु कायसा खनारजादि बाय हामबाय गेनब बेलायनो हामबाय ताकुक सन्जय रोजापुं खनानाहिनि कहरखा गसपेल रोजापुं गे खोनालायनाय खाखलाय अरोजापुं नोंखाथक जागोन ताकुक अरुण जमातियानि खरांग बेलायनो खोनाथक गसपेल रोजापुं गे खोनादि ताकुक सन्जय निनि निनि बागै अरोजापुं ते जत मारे किचिं सं नरब खोनायनायदि अखनाथक रोजापुं।

जों खानि रेचापुं पांदाव खनालाय थंगो नरकनि खना दक्सा खनि रेचापुं रक एसएमएस बेस्टि फियाबा ताबुक तो जरा फायसो पयका पायथागो हंकै पायथाग रेचापुं खनालाय जों खानि रेचापुं पांदानो पारि लायनाय आपनि आग्लो नरक खनाय मानाय थुमनुक हंकै नरक लगे थंदि पांदा पायसा जरानो खनाय थंदि हंकै थुमनुक दि आग्लो हायनो हाय नरक पाय ग्रोंफिनाय दाल बेदाल पांदानो तैदुलानि बागै रचापुं खनानानि बागै हंकै अजराव जों पायथाक रचापुं खानि रचापुं पान्दानि पान्दा तो पायाखौ पिया खानि रचापुं पान्दानि पायथाक रचापुं जों खनालायनाय बेलायनायाव खनाथ' रचापुं खाख्लायनो रगजतन अरचापुंनो खनाथक जागोन हंकै अरचापुं खनालायनो जों जिनि दिनैनि खानि रचापुं पान्दानाव बायदिलायनाय फियाबा नरक पान्दा पाया सात जरानो दिपलनि दामनि दामै सति थामजि जरा हां बाय ग्रोंगै थंदि लगै थंदि त्याय ट्युनखाय थंदि 101.6 मेगाहर्स एफएम उज्जैन हांखे जराव अरचापुं नरक जतनि बागै खाख्लायाव नरक जतन खनाथक जागोन अरचापुंनाव

0: ये ता किसा ते किसा ए उनका ताबुक ले खराब सा उनका है कन तंगड़े दो खराब सा हम या किसा सुई फेंक रहा ना तंग सुधी ओमो यंग तंग का यंग करी आयंग तंग का यंग करी तमा बो है सीमा तंग सी ए दोंग का दोंग का ना ता कॉक्स हाउ नहीं रहा सिला
1: चाखा पायों चाखा ये को अंशराय शराय की नो कॉक छायुमान का सामान इतने दो नमाव रोग बोक करी का पायों आगे ने है के नो शराय शराय उसको का पायों
0: दो है के तबुक सागर दी नो नो सब मो है के कलंग है क्या नंगान कॉक तो ही तंगले ना ता
1: नागर जाती पायों निने कॉक तो ही तंगे ने बागी नो अनि मोती हालो ब्यांग ने जानी बो चाकरक मा मुंगुई बुरी सी खोरक्षा तिनी बाइके छालताम काखा दी पोरखा नो फाई फायो ते नंग फरंगुंगै कलांग मा हाइके नो सापायो कट कट जांगे हिनै हाके आंगबो नंग सालांग मा हाइके नो सासकता रांगे बुतो जांगे हिनै हाके नो फाई मानि सिलाय थांग मानि सिमा दोलांगो हाके मांग नो उसखांग बाय मिया जरातिले चाकराक मा फाई मानि सिलाय थांग मानि नो दोइ मा तंगमानि आबोस आंग नो वानसुक लांगो फायंग ने बुंग सखांग सावसे आसक ओंगो हिंखाय आं अक्रा ने बुंग सखांग साखाइसे ते बोंगानि हिनै वांसु हुइ तिनि दिपरो फाइफुरु खाय बुतो आराइङा जाइङा हिनि छाजा क्लां खाता हाके बते बरोने खामा तोंसिसा हाय रोंसु खाता फायो
0: गथां तोंसा आनि कपन तानोर दि हाया खाय नों डाक्टर थिनाय बुजि खाता
1: हा बाय न खाबाय फिल जागै थाङैबो आंलेते मते आखल ओंलिया फायो दाखन फायो नों थांमानि न सेखिसा साउ खनारिग्रा दि
0: आनि बा सामु खाक्सा जाजक नता मायंग कुफुनबो थारै काबोइसे बिनि बुवा कंनै दुइ फाइक्या इको सिन गारिन गानो अनो खिक्लाय रे फेदर ओ
1: आबो त सासिम गा तमसा हाकलि मानि
0: आबो नता मायंग कुफु तोर मानि आबो तोर मना द सोलै दंसिबा आं थांमानि सालो न मालाय रिखा मा मायंग कुफु न
1: बुलखाय
0: साल हाथै हाथै जरव मालाय रियु दङर कतमा अर सतु कुबै तमानि बलों कुतु कसारो
1: आबो नुलखाय
0: आफुनि सिमि रलायमां तिनि हर थांनायनि आजुक मारि मारि ओसे बन बथार सुगुइ बिनि बुवा कंनि न सगगि कारिउइ तुबि अर ताबुक न सखफाय मानसिउ
1: मा उलखाय
0: आबोसे आयां गाना गिनि बाखगि पाइसुगुइ नायतुक नाबे सुक्का राजकुमारि गरन्तिन खाय नु सुनुक बुलिया गरन्ति मायं कुफुनि लगि किस करिना बियां रगो सेंग खाना दहाखि आता सागरदि नन बसाय रासु क्लांनायले बियांति फाय ताय बियांति थां नों सायदेमान
1: फायमानि काय सासलाबि मारिया बियांति फाय तोमाखाय थांमानि खेले इको उ जुरा दुबु फां गसंदां नु दानु हुरका आ बुदुंनो रमुइ न तलाव बिसुंग हाबै थांगु
0: बुजिखा निनि बसलाय न सराब रमानि आ बुदुंनो न नाहारि बिथि खलुइ तु ब्लासा बु फां या फांगो हाकर दतं गाहाम काय नागुजाक लिया दाकन नोंङो मायं गुफु बुआ न मुरगै गारिं गतंसुग्रा दि दुआता आं थाङै किसा रुगै नायग्राना
1: आखन
0: आबुनि उलसे गरन्तिन माना दु लायनै
1: फायं थांबा न सेखांनि हाय आसोग दोगै जा दङ जिदो आच्चा गारां माबाय मालाय खायसे बबासो ते बंलाया नों
0: निनि बोसलाय रासै गोलांनाय आच्चा गारां मनदा आं याकारनानि सेखांनि हाय आनि कक खोनाया ताउं दिफिया जेसा फायथों जेसा फन फायथंथों कट कट जांगिया होनबाय खायन कक थाइसोन उंना नांनाय रांगिया बुतवा जांगिया बुजिखाना बोले
1: बुजिखा फायं बुजिखा फायं नों हाथि बारसारमै आ मायं कुफुबाय जबा मांसिरिलाय मा तंखा हिंखाय ता मनो जाउै तंखासा नो मुंसासोग जालां दिता
0: आनि जानानि कक नों ता वानसोग दि जबा रोते तिन आनि चामुं आं जाउैनो दंगु आं किसाफोन अबुक जातंगिया नोंसे दिनैनि कुता मासाय खना जाउै पाइदि नों आं थांखा
1: दाखन थां दि गाहाम खोरोंखाय दातेन सखबाय दिदो मोताय रक्के बुया मोताय कतरखाय आनि फायं रांगियान बनसे मासुरि थाय
0: अमत जुरा फनां मा बुदुक जुरा दुखसे आबुनि या फंगो मारि ओइ रगि नायखाय ओ इकले अबु फां कतर तै कतनि या फां तैसे हाकर कतमा ताइसे ओ हाकर बिसिं तै थांगै दंख ओ बुदुनि या फां थांगै दंख ब्लासा हे आमा संगत्र मा बुदुक न रगिनो थांगै नायग्राना बा तेबसे थांबोला तेबसे थांको ए आबुन ओंखाना आचाकर मांनि न बा आबुबा राजाखर हाइसे ब्लासा हा तलत महाय नग रग बा दगलाम तै खतलबा मसा नायग्रा दि तामो के बसे करिन ब्लासा सिरिं सिरिं हे ओ आबो तामो बर खासिया हे नों साबो

थोंनोक खोनादोंबा खोनानाय जाखा दिनैनि थोंनोकनि मुं मायं कुफुर दिनै खोनानाय जाखा पाइथाक बखाक अबनसिकायाते कमथेंका मचां रुहि चंद्र देवबर्मा थोंनोक मोसानाय रखंखा नाना गरंटी साक्रमांखा रिमा देवबर्मा गरंती गयनाती इंखा तानिया देवबर्मा सिपिंटी इश्री इंखा हमसुक्ति रियां माइनांती इंखा रेशमा देवबर्मा दंग इंखा प्रांजित देवबर्मा राजा इंखा विनोद देवबर्मा सिपे अक्रांखा संजित देवबर्मा बुतुआ इंखा केशव देवबर्मा रांगिया इंखा शांत देवबर्मा बिरिंदिया इंखा बीरचंद्र देवबर्मा ताय सिपाही इंखा पार्थरंजन रूपिणी आकाशवाणी आगरतला ताबुक खनाबायना

के अजराव दाल बिदाल पान्दानो बायरि लायै जों थांलायनाय नरकनि हामजाकमा चिनि खातङ पान्दानो जेंनानि बखाक पान्दा बखाक थांलायनाय हायदा गाय हाबसकाङ तलांलाय चिनि नरकनि हामजाकमा चिनि खातङ पान्दानो गाय खनालायनाय नरकनि खनातङजाकमानि रिजाबमोन गेफादि जेंलायनाय दाबुकजों नरकनि हामजाकमा चिनि खातङ पान्दानो

0: 노력하는 동고 사라사 포인트 옥 메가하르사의 배문진 도저로 스튜디오 아숙사 강비너타 다북증 노력내 함삭 마치니 카동마 반다오 노력내 크라동삭 마니라 잡무럽노 카나라이네 그러니까 꼭둑 클라이디 0381-232-6253 꼭둑 넘버로 꼭둑 클라이 샤홀디 어저라오 보르 잡문 카나나이 강 जरा गबांग मानियाबा सति थामसिसि जराव मानुबा जों पुइलाव न कोगदुगया साखनाय गाय कोगदुगया साखनाय जराव स्वागतम हेलो
1: हेलो मेडम
0: अदिबर का हमलाम सगो
1: नानो अदिबर का हमलाम सगो आं बानिनि सेक्टर सजमान मेडम
0: चैत्र बानिनि ना द बर चापन खाना नाय सादि
1: गान नय हिनि गान खावना
0: द सादि बर चापन
1: लव स्टोरी
0: लव स्टोरी नि बर चापन
1: बाजारा रहर इमान इनको कि देखो मन देखो मिले
0: दो
1: तंगमला
0: तंगन है तंगन
1: आज तो तंग
0: दो दो हम भाई आओ उनके वंका ओ ताको चौथरो रचा पुंग कनाना हिने कोई हर का लव स्टोरी टॉक्यनी रचा पुंग

नरखनायथंगो सारासा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उज्जैनतनी खनाततक खरांग पांदा खनाततक खरांग पांदा वजर स्टूडियो आसक सागांग बिनता इनके जरा थाबुक पाइथागो फाइशो पाइका जरा सावी तंखा थांगसिदि तिननि बागेले तेमा तंगले हिने अजों जरानि बिसिंगनो बेबाक चिनि पांदा रो खाजा इनके जों जरानि बिसिंगनो चिन चिनि पांदा न चेंनानि बनांगो ते जरानि बिसिंगनो चिन चिनि पांदा न पाइनानि बो नांगो आबो सालब्रुन न नरखनाय दङ सायमानि दङ हेदा इनके तिनि बागै थां

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले

0: 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96 रुपए और 83 पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।